काम ईश्वर को नाम फल होने काम सब ये जन भक्त जन ले हो भजू भनी देखने आखिरी का पलना छेव मछी मंथी नारायण।

चाई दोनी ले रसंखा धोनी ले चार को सदा गुरु दानी स्वर्ग जानी होना जान सत्य बखता मा पा

0: सामुदायिक पहुँच का लागी संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

0: अनिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले राज्यों
1: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज़।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष तीर्थयात्रा नजाने बा?
2: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
1: जस्तै जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
2: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
1: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
3: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सीजी सातसोत धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर त्रिअम्बकेश्वर शिरडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेटद्वारका, बिन्दु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर, अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन, मथुरा, गोकुल, रमन रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुङ्गा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ।

ये लोग सामुदायिक फिर बैठे में थोपलो साथ में गया बात हो मुद्र प्रसाद साहब कोटा आज विक्रम संबद्ध 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन 2026 अक्टूबर 12 तारीख आश्विन 26 गते सोमवार द्वितीय तिथि अब स्तुति करो आयु द्रोण कुमार कैसरिया साक्षेण कल्पय भरी।

राजा नौशकाय सारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नहीं परे का घरे मंडा खुन सवाले दुर्योधन समान कर्ण समान दानमा तागत श्री बलराम कई सरी हो सदबात कई काम राजा धर्म कुमार कैसरी हो श्री ब्रह्म ज्ञान यानी विदुर कैसरी ज्ञान हव शिशु जन्म मनुन बड़ाले पनि कृति उज्ज्वल हो सुत सहित का

0: पियो पापको क्या डर मान्छ तोर बलले जसले बुहारी लियो सारै दुखी भएर सुगरी बजीले बिन्ती गरेको सुनी सूर्यको अब दुख हर्दछु भने अन्तकरणले गुनी।
1: मेरो नाम सूर्यबहादुर थापा, भिनपा तीन तार्थलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जो दायको फलचारी बुद्धि हिन दोन जानी के सुनि र पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तुम लोग उजागर, राम दूत अद्वैत बलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुतराम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार स्मृति की संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरजौ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जन साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूपधरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगाधर आया, हेम रूपधरी असुर संहारी, रामचंद्र की काश संवारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हरसिउर लाए, रघुपती कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत सुम भाई, सहज बदन तुम्हारा जस गावे, अज कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्री भई किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लिल्यो ताई मधु फल जानु, प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुबारे तुम रखबारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रखे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, इनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगदेव जी आरा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रो रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से ही सर्वसु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई छुटी बंदी मास हुई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, किजनाथ हृदय महडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसवन स्वरूप शिवर रामचंद्र शंकर जी बजा। जय हनुमान, जय बजरंग बली।

Chakshushati Kamerada Manchana Jariya Pane दूसरों कोई मेरा छोड़ो लोने उपादे का भातमा छोरी बिक्री करे रे का भरचान कष्टो बिचार जाता मन धर्म ही सौ सब करे रे सब ले छोड़ाई दाई जो देना धर्म